कम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरे मंजिल की वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास।

प्यारी प्यारी अगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए मुहब्बत से।

0: धर धर आनंद पाद झांझ और मृदंग
1: मोर नाच कोयल ने बीना बजाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है,
0: बधाई है।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है। आज राम जन्म की बधाई है।

तुम आज किसी कहो जाओ रे मुझे बाल माँ अब न सताओ रे आओ रे आओ रे आओ आओ रे मुझे बाल माँ अब न सताओ।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा भाव है घटा।